जिन को लगी प्यास अमृत से ही खाए, कल में हो पुन गुण गोविंद गाहे। सबसे नूह कृपाल संभाले साहे, साहे व्यर्था कोई ना जाए, जे आवे तो दाहे। श्लोक महला पंजवा। दूजा तैस ना बजायो, पार ब्रह्म ना दे आधार, अगम गोचर साहबो समर्थ सच दा तार। तू नहचल निर्वैर सा सचा तो दरबार, कीमत कह न जाइए अंत ना पारा वार। प्रभ छोड़ प्रभ छोड़ होर जे मंगना, सब विख्या रसार। से सुखिए सा सा से जन सच्चा व्यवहार, जिना लगी प्रीत प्रभ नाम सह सुख सार। नानक करादे संतन रे नार। महला पंजवा। आनंद सुख विश्राम नित हर का कीर्तन गाए, अवस्यान पछाड़ दे नानक उदरस नाए। पौड़ी। ना तू आवे बस बहुत करान बे, ना तू आवे बस वेद पढ़ाण बे, ना तू आवे बस तीर्थ नाइए, ना तू आवे बस धरती ताइए, ना तू आवे बस किते सियाण पे, ना तू आवे बस बहुता दान दे। सब को तेरे बस अगम गोचरा, तू भगतां के बस भगतां तान तेरा। श्लोक महला पांचवा। आपे वैद आप नारायण, ए वैद जिया का दुख लायण, गुर का शब्द अमृत रस सायण, नानक जैस मन बसे तैस के सब दुख मिटायण। महला पांचवा। हुक्म उछले हुक्मे रहे, हुक्मे दुख सुख सम कर सहे, हुक्मे नाम जपे दिन रात, हुक्मे जसनो होवे दात, नानक जसनो होवे दात। हुक्म मरे हुक्मे ही जीवे, हुक्मे नाना बड़ा थीवे, हुक्मे सोग हरख आनंद, हुक्मे जपे निरोरत गुर मंत, हुक्मे आवन जान रहा, नानक जा को भगती लाए। पौड़ी। हूं तैस ढाडी कुरबान जे तेरा सेवदार, हूं तैस ढाडी बुलहार जे गावे गुण अपार, सो ढाडी तन तन जैस लोड़े निरंकार, सो ढाडी भागड़ जै सचा सचा द्वार बार, ओ ढाडी तुद त्याए कराने दैना नार, मंगे अमृत नाम ना आवे कदे हार, कपड़ भोजन सच रहंदा लेवे धार, सो ढाडी गुणवंत जैसनू प्रभ प्यार। श्लोक महला पांचवा। अमृत बाणी अमेय रस अमृत हर का नाओ, मन तन हिरदे सिमर हर आठ पहर गुण गाओ, उपदेश सुनो तुम गौर सिखो सच्चा एहो आओ, जन पदार सफल होए मन में लाहयो पाओ, सू सहज आनंद कणा प्रभ जप तदियां दुख जाए, नानक नाम जप सुख उपजे दरगह पाइये थाओ। महला पांचवा। नानक नाम ते आइए गुर पूरा मत दे, भाणे जपता संजमो भाणे ही कढ ले, भाणे जौन पवाइए भाणे बख्श करे, भाणे दुख सुख भोगिए भाणे कर्म करे, भाणे मिट्टी साज के भाणे जोतरे, भाणे भोग भगाइंदा भाणे मने करे, भाणे नरक सुरग अवतारे, भाणे तरन पड़े, भाणे जस भगती लाए, नानक बिरले हे पौड़ी। बुढ़ियाई सच्चे नाम की हो जीवां सुन सुने, पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खणे, दिन सरैन तेरा नाम सदा सत जापिए, तृष्णा पुख विकराल नाए तेरे त्रापिए, रोग सोग दुख वंजे जस नाम मन बसे, तिसे प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसे, खंड ब्रह्मांड बयान तो उदाहरण हारिया, तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पांचवा। मित्र प्यारा नानक जी मैं छट गवाया, रंग संभे भुली तो सज्जन की मैं कीम न पाउंदी, हो तुद बिन अड न लेंदी। महला पांचवा। सस विराय नानक जियो, ससरा बादी जेठो पौ पौ लूहे, हब्बे पस पणेंदे वतन तां मैं सज्जन तू है। पौड़ी। जस तू बुठा चैतस दर्द निवारण, जस तू बुठा चैतस कदे ना हारणो, जस मिलिया पूरा गुरु सो सर परतारणो, जस नू लाए सच तै सच संभालणो, जस आया हथ निदान सो रहा पालणो, जस नो एक रंग भगत सो जानणो, ओ सबना की रेण बिर ही चारणो, सब तेरे चोज बनान सब तेरा कारणो। श्लोक महला पांचवा। औसत निंदा नानक जी मैं हब बुझाई छोड़िया, हब कुछ त्यागी, हब्बे सा कुड़ावे डिठे तो पल्ले तेंडे लागी। महला पांचवा। फिरदी फिरदी नानक जी ओह फावी थी बहुत साबर पंदा, तहो सुख सुखाली सुती जा गुर मिल सज्जन मैं लद्दा। पौड़ी। सबे दुख संताप जा तुद हों भुलिए।

ठहरै। संत का दुख ही जन्मे मरै, संत के दुख ना सोते ठहरै। संत के दुखी को ना ठाव, नान संत भाविता ने मिलाए। संत का दुखी अद बीत टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै। संत के दुखी को ध्यान परमाइय, संत का दुखी उजर पाइय।

ते जंत कुमार सदा सदा हर के गुण गाय। राम नाम जो करे विचार से त्रिमंत करे संसार, मंत्र मुख बोले हर मुखी सता सता जानो ते सुखी। एको एक पछाने ऐत्य उत की उसो जी जाने।

सो प्रसन्नार्प देव अवनासी प्रमर में राख मान की तू प्रीत्या तस्ते परिनाय को सार पुदना त्रे को सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सातरे की चरणी पाव नानक मन इहुनरा।

है। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेव सदा पुजारी, ठाकुर के सेव के मन प्रति, ठाकुर के सेव के निमरी, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक प्रभु परण हारा, सेवक राख निरंकारा, सो सेवक जिसते अपर धारे नान, सो सेव सास सास मारे, अपने जन का परदा ढाके, अपने सेव की सर पर रखे, अपने दास को देव बढ़ाए, अपने सेव को नाम जपाए, अपने सेव की आप पत रखे, ताकि गत मित को न राखे, पक सेवक को न पहुंचे, पक सेवक उते उचे, जो प्रभु अपनी सेवा ला, नान सो सेवक दह दिपटा, निकी किरी में कर राखे, भाषम करे दास कर कूड़ राखे, जिसका शासन काटते आ,

ब्रह्मे जन जन में पाव ब्रह्म के अपने कृपा सह सोसियान प्रयान चय नानक सा गुरबट पाकी पै सफर दर्शन पुनीत पारसा चरण गत निमरीत पीटर संग राम कुन रपै पाव ब्रह्म की दर के कपै सुनकर बचन करण का निम संतोखा तुम पतिया ने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे संत गुण प्यान कीर्तनी पाए ना जिस भावित सले मिलाए जे भाई कुत ने का सतपुरखा पूर्ण बबेका काहू बो न पहुंचे प्राणी

एको एक खर्याप पूर्ण पूर्यो प्रव्यापन प्रसारिक ते पै एक अराध प्रात गए मान तन्यंत्रे प्रव्राता गुरुप्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रव्याया प्रयतो सुनाय नानकी प्रभिनते अपनी भक्ति लायट पदी जाचक जनजाति प्रदान कर कृपा दे बोहना सचना की मांगो तूर पाप प्रमिल श्रद्धा पूरा

बाल आद पुरख कारण करता भक्त न के प्राण दा जो जो जपै सो हय पनीत भक्त पै लावे मनहित हम निर्गुनिया नीच जात नानक तुमरी शरण पुर भगवान सर्ब बै कुंठ मुक्त मोह पाए कने खर के गुण गाए अनक राज भो बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई बो भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हरणीत

जावत। तब हर कसुग कहो किसे ब्यावत्या, जब अपने आप आपा ब्रह्म तब मोह कांक सोत परम। अपन खेला प्रतीजा नानक करने हन, दूजा जा होर प्राके धनी तब बंद मुक्त को किसको गनी। जब एक हर कुम पा तब नरक सुर्ग को कौन ता, जब निर्गुण प्रभ सहस पाए तब शिव सख्त कहो हो किठाए। जब आपे आपे अपनी जोत तरे तब कवन निडर कौन का डरे, अपन चल त्याग करने हा नानक ठाकुर अगम पार। अपना सी सुख अपने आसन, तब जन्म मरण कहो काम विनाशन, जब पूर्ण करता प्रसोए तब जम की त्रास कहो हो किसोए। जाबे अवगत अगोचर प्रायिका तब चेतर गुप्त केशपूत रेखा, जब नाथ नंदन गोच लगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप या फीचर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा, जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता। जय है निरंजन निरंकार निरपान तय कौन कुमान कौन अपमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तय शर शिदला को खीस। जय ज्योत स्वरूपी जो संसमावे तय कसै पूकम त्रुताय। करण करान करने हा नानक करते कना समा, जब अपनी शोभा अपन सब बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुर पाए। जय सर्व कला पे परवीन तय वेद कतेव कांको चीन, जब अपने आप या पाल जब अपने आप

पूरन पूर रहे दयाल सय प्रहोत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रो पे आप प्रत पादे जीन बपांत जो जो रचो सो तस्याल जिस भावे तस रहे मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करण हर नानक एक जानिया चन राखा रे के नाए तुकी आसन व्यर्थि जाए सेवक को सेवा पन्याय हुकम भूर पन पद पाए ते उप नहीं बिचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर फै निरफार अंदर पूजे गुर के पैर एह लोक सुखी फलो सहेले नानक कृपया पे मेरे सा मिल करो आनंद कुन गावो प्र परमानंद

जी पाए। तिसका किया सब प्रवान गौर प्रसाद नानक इहो जान जो जाने तिसदा सुख होए आप मिलाए लय प्रसोए। ओहो धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जनया जिस प्रसाद सब जगत राया।

पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म लिखित कर पेख सास सास सिमरू गोपिंद मन अंतर की उतरा चिंद आस अनित त्यागो तरंग संजना की तुर मन मांग या छोड़ बेनती करहो सासंग अग्न सागत तर हर तन के पाले उपंडा नान कर पूरे नमस्कार खेम कुसर सहज आनंद सार संग पर परमानंद नरक निवार उदारो जियो कुन गोपिंद अमृत रस पियो चित चित्तपो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक

0: कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निबहे खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत साब धान एकाग्रचित सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रदान पुरख परगट सलोए सब ते उपाय स्थान बहु न हो पे अपन जान हर तन खाट चढ़ जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सब सिद्ध विद्या तप जो प्रत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम
1: मरण कबला दास चाक सिमरण निद निद

आनंद सुनो बड़भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभा उतरे सर्व सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सर से पूरे वरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र।

दुख हरण उचरण नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान नानक लिपत न माया। पाहे बलंदड़ी बुझ गए रखंदड़ो प्रभे आप। जिन उपाय मेदनी नानक सो प्रभ जाप। पौड़ी जा प्रभ भय दयाल न व्यापै माया। कोट अघा गए नास हर एक त्याया। निर्मल पै शरीर जान धूरी नाया। मन तन पै संतोख पूरन प्रभ पाया। तरे कुटुंब संग लोग कुल सबाया। तरे कुटुंब संग लोग कुल सबाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कारयोग सतसंगी जनों वडभागे हां सेवक परिवार पंगू परिवार वालों बच्ची माही कौर दे जन्म की खुशी नूं मुख रखदे हां अते ढिल्लों परिवार वालों परिवार की सुख शांति दी रोगता चढ़दी कला नूं मुख रखदे हां। सेवक परिवारां ने रल मिल के श्री सुखमणी साहब जी के पाठ आरंभ करवाए सन। अकाल पुरख वाहगुरु जी की अपार बख्शिश हुई है। निर्विघनता सहित समाप्ति उपरंत परिवारां दी बच्चियां दी चढ़दी कला दी अरदास विच आप संगतां ने शमूलियत कीती है। इस मौके दे उते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो पावन मुख वाक दी दात बख्शिश कीती है पवित्र उपदेश आप संगतां ने सरवण कीते हन। पंगू परिवार अगे बेनती है जे बच्ची माही कौर दरबार हाल दे अंदर मौजूद होवे बच्चे नूं स्टेज ते लेके आउण दी कृपालता करनी। बच्चे नूं सर्टिफिकेट दे के सन्मानित किया जाएगा। परिवारां वल्लों आईआं होईआं समूह संगतां दा तहि दिल तों धन्नवाद है जिन्हां ने परिवारां दे सद्दे पत्र ते पहुँच के परिवार दा माण वधाया है। परिवार वल्लों सभनां नूं जीओ आया आईआं होईआं समूह संगतां वास्ते सेवक परिवारां वल्लों गुरु के लंगर तैयार करवाए गए ने। आप संगतां ने गुरु के लंगर विच्चों प्रशादा छक के जाण दी कृपालता करनी जी। गुरद्वारा साहब विखे नगर दोसांझ कला की संगत वालों नगर ठीकरीवाल की संगत वालों तो भाई इकबाल सिंह परिवार वालों तीन श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ ने। भड़के सवेरे 9:30 भोग पैणगे उपरंत हफ्तावरी दीवान सजणगे। परिवारां ते नगर निवासियों वालों बेनती आप जी ने दर्शन देने की कृपालता करनी जी। गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदे आ गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सरी विखे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की संथ्या आरंभ होने जा रही है। जिन्हां भी संगतां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी की संथ्या करनी होवे वह कृपा करके अपना नाम ते फोन नंबर बाल डेस्क उत्ते लिखाउण की कृपालता करनी ताकि संगतां वास्ते पोथियां का उचेचा प्रबंध किया जा सके। आने वाली 1 तरीक तो गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सरी विखे गुरबाणी पाठ की संथ्या आरंभ होने जा रही है। जिन्हां भी संगतां ने गुरबाणी पाठ की संथ्या लैनी होवे वो अपना नाम ते फोन नंबर डेस्क ते लिखाउण दी कृपालता करनी ताकि उन्हां वास्ते पोथियां जां होर समगरी दा उचेचा प्रबंध किया जा सके। आसे आप जी बेनती प्रवान करोगे जे बच्ची दरबार हाल दे अंदर मौजूद है कृपा करके बच्ची नूं स्टेज ते लैके आउण दी कृपालता करनी जां आप जी बाद विच वी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकदे हो। समां है गुरबाणी शब्द कीर्तन दा। सेवा निभाउण के सत्कारयोग भाई परमिंदर सिंह जी लुधियाने वाले अवतना दे जथे पासों गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण करिए। भुला चुकां दी खिमा आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जी की अरदास है, समूह खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चिते आवे, चिते आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तर शरवाए, देखते

हमें अवगुण परेक गुण नाही, अमृत शाड बिखे बिखकाए, माया मोह भरम पै फूले, सतदारा स्यो प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मलंत जम त्रास मिटाए। एक अरदास पाठ कीरत के, गुरु रामदास राखो शरणाय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी, सलोक दया करण दुख हरण, उचरण नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान है, नानक लिवत न माया। दया करण दुख हरण,

हरेक त्याया निर्मल पै शरीर जन धूरी नाया मन तन पै संतोख पूरण प्रभ पाया तरे कुटुंब संग लोग कुल सबाया निर्मल पै शरीर जन तूरी नाया

आठ जाम चौसठ करी तो नरक तरह जियो नीचे लोयन क्यों रहो सब कट देखो पियो सुन सखी पी मैं जियो बसै जी मैं बसै कपियो जियो बियो बूझो नहीं कट मैं जियो कपियो

सवैये। श्री मुख बाक महला पंजवा, आद पुरख करतार करन कारण सबे आपे, सर्ब रे हो पर पूर सगल कट रे हो बे आपे।

तास गुण कवन बखानो, जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत न जानो। बोहिथो विधाते निर्मयो, सब संगत को लियो धरण, गुर अमरदास कीरत कह, त्राह त्राह तो पा शरण। आप नारायण कला तार, जग में परवर्यो निरंकार आकार, ज्योत जग मंडल करो। जह कहतह भरपूर, जह कहतह भरपूर, शब्द दीपक दीपायो, जह सिक्का संग्रहो, तत हर चरण मिलायो। नानक कुल निमल अवतरयो, अंगद लैने संग हो, गुर अमरदास तारण तरण, जन्म जन्म पा शरण तो। जप तप सत संतोख, पिख दर्शन गुरु सिखा, शरण परें ते उबरें, छोड़ जंपुर की लिखा। भगत पाए भरपूर, हृदय उचरै करतार, गुर गौहर दरियाओ, पलक डुबंत है तार। नानक कुल निमल अवतरयो, गुण करतार उचरै, गुर अमरदास जिन सेवयो, तिन दुख दरिद्र पर हर पर। चित चित मोह अरदास कहो, पर कह पी न सको, सर्ब चिंत तुझ पास, साध संगत हो तको। तेरे हुक्म पवै नीसान, तो करो साहिब की सेवा, जब गुर देखै शुभ दिष्ट, नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख, जो फुरमावै सो कहो, गुर अमरदास कारण करण, जिम तू रखें तिम रहो पिखे की। गुर ज्ञान अर ध्यान, तत स्यों तत मिलावे, सच सच जानिए, एक चित लिवलावे। काम क्रोध वस करे, पवन उडंत न थावे, निरंकार कवसै देश, हुक्म पुज बिचार पावे। कल माहे रूप करता, पुरख सो जाने जिन किश कियो, गुर मिलियो सोई भिखा कह, सहज रंग दर्शन दियो। रयो संत हो टोल, साध बहुते रे डिठे, सन्यासी तपस्या मुखों ए पंडित मिठे, बरसे कहो फिरियो किने ना पर चौलायो। कहत्या कहती सुनी, रैत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजै लगे, तिनके गुण हों क्या कहो। गुरदई मिलायो भिखिया, जिम तू रखें तिम रहो। पहर समाध सना ज्ञान है, आसन चढ़ियो, त्रम तनक कर गयो, भगत सीलां सर लड़ियो। पै निरपौ हर अटल मन, शब्द गुर निजा गड्यो, काम क्रोध लोभ मोह पत, पंच दूत बिखंड्यो। भलो पुहाल तेजो तना, नृपत नाथ नानक बार, गुर अमरदास सच सल भाणा, तैं तल यतो इम युद्ध कर।
ਕੰਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ ਰਬ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਨ ਭਾਲੂ ਨ ਜੋ ਗਾਵੈ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹ ਬਣ ਆਵੈ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਵਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਗਾਵਾਂ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਬਿਗਾਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਅਵਗਤ ਧਿਆਇਓ ਤਿਸ ਭੇਟੇ ਦਰਿਦਰ ਨ ਚੰਪੈ ਕਲ ਸਹਾਰ ਤਸ ਗੁਣ ਜੰਪੈ ਜੰਪਉ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੁਜਨ ਜਨ ਕੀਰੇ ਅਮਿਯ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਉ ਫੁਰਿਆ ਇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਉਰ ਧਰਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਚਾਹਕ ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੇ ਕਵ ਕਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਿਯ ਭਰ ਭਰੇ ਛੁਟਤ ਪਰਵਾਹ

करें मन मज्जन पुब जनो सेवा करिया तिन भव निवारियन पै पद दीना शब्द मात्र ते उधर तरे कब कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास हरि पर परे सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कमल सहज प्रकाश्या अपै निरंजन कर लह सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस पर सद वस पंच करी काव कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सर्य भर परे अनपौ न मानी अकल लिव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मिटिया जन्मांत मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरी कब कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास हरि अपर परे अपर परे पायो अपर दंतर धारियो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् बिचारियो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुरु रामदास का लुचरै तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै आम्य रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै तुरत दुरंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सील सनाम फुटै सतगुर परमान बिदनै सिरियो जग जस तूर बजायो गुरु रामदास कलुचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नव निद नाम निदान रिद्ध सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अविनाशी आदले भगत जित लग तरी सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कल उचरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत परवा प्रीत पुबली न हुटै सतगुर शब्द यथा आम्य धार रस गुटै मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आजोनी संभव्यो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचर अपर पर मन गुरु शब्द वसायो गुरु रामदास का लुचरै तैं जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत पाव तारण अमृत बूंद हर नाम बिशकी बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुरु प्रसाद पाइए धन ते जन बड़ भागे ते मुक्ति पए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास गुरु रामदास कल उचरै तै शब्द निशान बजायो सेज सदा सहज शावान संतोख सराचो सदा सील सना सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगात बो है।

गुरु जिन को सो प्रसन्न नाम हरिदय नवासै। जिन कहो गुर सो प्रसन्न दुरत दुरंतर नासै। गुरु जिन को सो प्रसन्न मान अभिमान नवारै। जिन कहो गुर सो प्रसन्न शब्द लग पौ जल तारै। परचो प्रमाण गुर पायो तिन सकियथो जन्म जग। श्री गुरु शरण पज कल कब भुगत मुक्त सब गुरु लग। सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे। अनभौ नीजा नाम टेक जित भगत अघाणे। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे। राज जोग गुरु रामदास तुम हूँ रस जाने। जनक सो

अकथ कथा अमरा पुरी जिस देह सुपावै ही जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन अवे। सत गुर नाम एक लेव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कौ कत हुवै जियो। तारण तरण खिन मात्र जा को त्रिष्ट तारै शब्द रिद विचार काम क्रोध खोवै जियो। जियन सबन दाता यगम ज्ञान बिखे आता एहन सत्यान तावै पलक न सोवै जियो। जा को देखत दरिद्र जावै नाम सो निदान पावै गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल तोवै जियो। सत गुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहु कत होवै जियो। धर्म कर्म पूरे सत गुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मन जन सुर नर जाचै शब्द सारे एक लिव लाई है। फुन जान को तेरा अपार निरपौ निरंकार अकथ कथन हर तुझ बुझाई है। परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को न दंड काल गुरमत त्याई है। मन प्राणी भक्त विचार एहन से जप धर्म करम पूरे सतगुरु पई है। हाँ बल बल जाऊं सतगुर सच नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सेओ एक मुख रसना रसो जुग जोर कर। फुन मन बच क्रम जान अनत दूजा न मान नाम सो अपार सार दीन गुर रिद धर। नल कव पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुबास जस सिमर ध्यान तर। जाके देखत दवारे काम क्रोध ही निवारे जीहो बल बल जाओ सत गुरु सच नाम पर। राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास प्रथमे नानक चंद जगत पयु आनंद तारन मनुख जन कियो प्रगाश। गुर अंगद दियो निधान अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमत न तरास। गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत यगन दिखत गत चरण कंवल जास। सब बिद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दियन गुर रामदास। रड जिसे तारियो धरतिया रव्यो म्यार पवन ते नीर सारे अवर अनलिया नाद कियो। सस रेख ने सूर दिन सैल तरु फल फुल दियो। सुर

प्रकाश। कच्चों कंचन पयो शब्द गुरु श्रवणे सुनियो, बिकते अमृत होयो नाम सतगुरु मुख भण्यो। लोहो होयो लाल नदर सतगुरु जद धारै, पाहण मानक करै ज्ञान गुर कहो बिचारै। काठों श्रीखंड सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिन के गए। सतगुरु चरण जिन परसिया, से पाश परेत सुर नर भए। जाम गुरु हे वल तने क्या गर्व दिजै, जाम गुरु हे वल लख बाहें क्या कीजे। जाम गुरु हे वल ज्ञान यर ध्यान अनन पर, जाम गुरु हे वल शब्द साखी सो सचा घर। जो गुरु गुरु अहनिस जपै, दास भट बेनत कह। जो गुरु नाम हृदय में तरै, सो जन्म मरण दो थेर। गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवै। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार, गुरु करे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन अघन, कटै सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कब नल कै। जिन गुरु न देखियो ना कियो, ते अकेत संसार मैं। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारण तरन समृत कलयुग, सुनत समाध शब्द जिस अकेरे। फुन दुखन नाश सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान बस्त ते नेरे। पूर्व पुरख हृदय हर सिमरत, मुख दे कथे अग जाहे परेरे। जो हर बुद्ध रिद सिद चाहत, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, हुती जो प्यास पीयूष पवन की, वंचित सिद्ध को बिद मिलायो। पूर्ण पो मन ठौर बसो, रस बासन स्यों जो दहंग दिशतायो। गोबिंदवाल गोबिंदपुरी, समझलन तीर बिपास बनायो। गयो दुख दूर भरखन कोसो, गुरु मुख देख गुरु सुख पायो।

और संसार सफल गंगा गुरु दर्शन परसन परम पवित्र गति। जीतें जम लोक पतित जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते। रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुर बंचे जा की शरण सतगुर गुर सेव अलकत जा की। श्री रामदास तारण तरण संसार यगम सागर तुला हर नाम गुरु मुख पाया। जग जन्म मरण पगा ये आई ही प्रतीत प्रतीत ही है आई। जिन जन कै तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई। अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिब दिष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलकत जाकी। श्री रामदास तारण तरण परताप सदा गुर का कट कट परगाश पया जस जन कै। एक पढ़ें सुने गावें पर भत्त है करें इशनान। इशनान करें प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहित करं। कंचन तन हुए परस पारस को ज्योत रूपी ध्यान तरं। जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रया पूर बौपिद बरनं। सतगुर गुर सेवी लकत जाकी। श्री रामदास तारण तरण जिनो बात निश्चल त्रू जानी तेई जीव काल ते बचा। तिन तरयो समुद्र रुद्र खिनी एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडल नी सुर जी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम सेवी है सच।

गुरु रामदास चित्तं बस गुरु समरथ गह करिया त्रुव बुद्ध समत समारण को फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को।

पार उतार न कहो, संतत ही सतसंगत संग सुरांगर तेज जस गावत है। त्रम पंथ तरि उतरणी तर या पर हे लिब तार न तावत है। मथुरा पन पाग पले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटित दिन आगर। गहर गंभीर अथा अतबर सोबर सदा सब बिद्रत नागर। संत मराल करें कंतु हल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कलयुग दुर्त दूर कर बे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जा को मन ध्यान तर फिरत सगल जुग कबहू को पव आत्म प्रगोश को। वेद बाणी साहित बिरंच जस गावे जा को शिव मन गहन तजात कबिलास को। जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेक किए फिरत उदास को। सो तिन सत गुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुरु रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंजते लोग प्रगासे। देखत दर्श पटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासी। सेवक सिख सदा अत लुभित अल समूह।

तीन भवन भरपूर रहो सोई। अपन सरस कियो न जगत कोई, अपने आप आप ही उपायो। सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुर असुर। नर गण गंधर्व खुजंत फिरे, अविनाशी अचल अजूनी। संभव पुरुष होतमें अपार परे, करण कारण समरथ सदा सोई। सर्ब जी मन ध्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं। तैं हर परम पद पायो।

अंगदे अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस्योहियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाह वाह कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। नारद त्रू प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जो गण अम्बरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पणं। तिन कौ अवतार पयो कलपिंतर जस जगत्र परछायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। मनशा कर सिमरंत तुजै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिणं।

तैं हर परम पद पायो। जिह सतगुर सिमरंत नैन की तिमर मिटै खेना, जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नवनिद पावे। सोई रामदास गुर बल पाण, मिल संगत तन तन करो, जे सतगुर लग प्रभ पाई है, सो सतगुरु सिमरो नरो।

एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। मोह मल बवस कियो काम गह केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो झाड़ियो। जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्नै पाव सागर बंदेओ सिख तारे सो प्रसन्नै। सिरिया तपत सचो तख्त जोग भोग संजुत बल गुर रामदास सच सल भाण तू अटल राज अभग दल। तू सतगुर चो जुगी आपे आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत धुर धुर। आद जुगाद अनाद कला तारी त्रेलुआ अगम निगम उदरण जरा जमया अरुआ। गुर अमरदास थिर थप्यो परगामी तारण तरण अग अंतक बदै न सल कब गुर रामदास तेरी शरण।

तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजस बखाण्यो, भगत जो को जैतवार हर जन क्यो पायो। शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो, गुरु नानक अंगद अमर लागी उत्तम पद पायो। गुर अर्जन कर गुरु रामदास भगत उतर आयो, बड़पागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो, मन मानक संतोखियो गुरु नाम दृढ़ायो। आगामी अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो, गुर अर्जन कर गुरु रामदास यन पौ ठहरायो। जनक राज बरताया सत जोग अलीणा, गुर शब्दे मन मान्या या पतीज पतीणा। गुर नानक सच नीव साज सतगुर संग लीणा, गुर अर्जन कर गुरु रामदास या परंपर बीणा। खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचर्यो, बिमल बुद्ध सतगुरु समाणो, आजुनी संभव्यो सुजस कल कवियन बखाण्यो। गुर नानक अंगद वर्यो गुर अंगद अमर निदान, गुर रामदास अर्जन भरयो पारस परस परमान। सद जीवन अर्जन अमोलिया जोनी संभव, पै पंजन पर दुख निवारिया पारिया नंभो।

सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो और आदि पुरख प्रतख लिख्यो अक्षर मस्तक धुर प्रगट जोत जग मगै

पन मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सनमुख रहो। कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल सृष्टि लगभे तरो।

स्यों अंत न पावत देव सब मुनि इंद्र महाशिव जोग करी फुन बेद बिरंच विचार रयो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है संगत

जग और न जाहि महा तम मैं अवतार उजागर आन कियो तिन के दुख कोटक दूर गए मत।

परतच हृदय गुरु अर्जुन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। जब लव नहीं पाग लिलार उदय तब लव प्रमते फिरते बहुत आयो। कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा जग तारन कौ अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। काल समुद्र पय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसें संत जिस हृदय दुख दर्द निवारण। निर्मल पेख अपार।

खंड में जोत स्वरूपी रहो पर पान मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर। अजय गंग जल अटल सिख संगर सबनावै नित पुराण बाचियां वेद ब्रह्मा मुगावै। अजय चवर सिर ढुलै नामी अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर या परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जा संचरियो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो।

रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपै। असुर गए ते पाग पाप तन पीतर कंपै। काटे सो पाप तन नरों के गुर रामदास जन पायो। शतर सिंहासन पृथ्वी

ससुर सुइया क्यों करी निमण ना जाए थनी। गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौलहरी। से पी टेंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी। सुन मुंदे हरना आखिए

सत लाओ। सह सहज यरा पर रहो माँ को अवर न टांग, नानक गुरमुख छुट्टी है हर प्रीतम स्यो संग। बाग मरे मन मारी है जिस सतगुर दीख्या होए, आप पछाण हार मिले बहुड़ ना मरना होए।

जे को पूंजे तिस का होए उदारो ए वस्त तजी न जाई नित नित राख्यो तारो

सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग लापे अठो नंदन प्रथम राग भैरो वै कर ही पंच रागनी संगो चराही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुनस लेकी के पे बारी है पैरों की पंचो नारी पंज मरद सा सुना वह बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव कै गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशकला पै संग रागनी पंचो था पै गोंड करी और देव गंधारी गंधारी स्योती उचारी तनाश्री है पांचो गाई महारा को सख संग लाई पंच त्रासी है पांचो गाई महारा को सख संग लाई मारू मतंग में वारा पर बलचन कौसके बारा खोखड़े पौन नद गाए अस माल को सख संग लाए पुंडायो हिंडोल पंजना संग सुत उठे तान कलोयल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाई सासी ले पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रन बे मंगलन सोहाय सरसबान हुआ बनोदा गावे सस बसंत कमोदा आशुपुत्र में कह सवारी पुनाई दीपक की बारी काजली पट मंजरी थोड़ी कई अलाप कामोदी ओ गुजरी संग दीपक के था कालंगा कुंदले ओ रामा कमल को चंपा के नामा गौराव कांडला कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सामे सिरा वै गावे पांचो संग बरंगन लावे बैरारी करना ती तरी गवरी गावे आसावरी ते पासे सिंधवी अलापी श्री राग सिंह पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खस मेघरा वै गावे पांचो संग बरंगन लावे सोट गोण मलारी तोनी पुन गावे आसा गुन गोनी ऊंचे सरसों पुन कीनी मेघ राग सिंह पांचों चीनी बैरा दर गई दर केदारा जबली तर

दूध कर्म फुन सुरत समायण होय निरास जमावो जबो तय को नमा अवर निराफल कामा रहाओ। ए मन ईटी हाथ करो फुन नेत्रों नींद न आवे रसना नाम जपो ता मथिया इन वेदे अमृत पावो मन संपट जित सत्सर नामन पावन पाती तृप्त कर पूजा प्राण सेवक जे सेवै इन बिद साहिब रवत रहे कहंदे कहे कहे कह जावे तुम सारे अवर न कोई भगत हीन नानक जन जंपा हौसला ही सचा सोई कहंदे कहे कहे कह जावे तुम सारे अवर न कोई भगत हीन नानक जन जंप हौसला ही सचा सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अवर नाही थाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाओ रहाओ।

सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखां आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे नाओ सुल्तान होवा मेल लश्कर

दर्शन देख पतंग ज्यो ज्योति अंदर ज्योत समानी शब्द सुरत लेव में।